एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505।

चुप माड़ी आ गल नहीं माड़िया 905-673-3337 गलां बातें करांगे और खूबसूरत एक घंटे का साथ थोड़ा सा बने रहना। स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक 9:09 हो चुके हैं, 10 बजे तक गलां बातें महफला लावांगे खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान दे विच।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म्स अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251
1: कनाडा विच प्योर पंजाबी खानिया आते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
0: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग लाइव ट्रक लिया के थोड़ी कार केटरिंग की सर्विसेज दिन देने
1: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलिया मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट
0: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172 कॉल करो गुरजीत रंधावा नु 647-338-9172
2: बड़े वीरे चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण ले किथे जावां
3: ता फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नु पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी वधेरे जानकारी ली क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरा नु कॉल करो
1: 416-717-2929
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको
4: लेडीज एंड जेंटलमैन You are not ready for this.
5: पर हुन थोनू कार लैन ली रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा
6: रेजिडेंशियल कमर्शियल रीफाइनेंसिंग डेट कंसोलिडेशन सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस प्राइवेट फंड्स
5: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ डीलिंग विद ऑल बैंक
6: कॉल 647-606-8110
5: और विजिट sharmamortgages.com
7: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी
8: ले आपा हुणे करदे आ संतू साहब दा गल करते हैं मसले दा हल
7: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नाउ एयर कंफर्ट दे जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ कॉल 647-706-6640
8: 647-706-6640
9: ओए ट्रक काला लिया जब वेखो एदिया कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
10: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है जीटीए विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप पीएनजे स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
1: पहुंचो 5530 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसिसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
11: इथे पी लाइन लेजर मशीना नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दिया मशीना नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहंदे हो
10: कॉल करो जेएन गैरी नु
11: 905-459-5533
10: 905-459-5533
11: PNJ Spring Wheel Alignment

0: 905 799 8877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्ट जागो अते वेडिंग ले आज ही केटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवावां देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे। दविंदर पवार,
4: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज, होम इक्विटी, बिजनेस लोन, डेट कंसोलिडेशन, रीफाइनेंस, रेंट टू ओनली, कॉल करो दविंदर पवार नू 6479888731 6479888731।
3: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
4: दविंदर पवार।
3: जेकर एक बार इना तुहाडी फाइल वेख के हां कह दित्ती ता अपने भा देते हमेशा खरे उतर देहान। लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
5: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन, 905-790-0560, 6 Marconi Court, Bolton, 905-951-9394। Stephen Furniture की धमाके दार फेस्टिवल सीजन से।
6: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
7: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआदी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
6: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
7: 6475-5294-647-835-5294।
8: नाले चोपड़िया नाले दो दो।
9: आहो जी मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
8: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
9: एक बार आओगे फिर बार बार आओगे।
8: अनबीटेबल प्राइसेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी, 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley।
7: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257।
10: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475-5594-6475-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: पीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763

0: बंटी बबली का विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटियां इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा, घर पहला दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संतन अवर ना काहू जानी, बेप्रवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी।
1: स्वागत जी इस प्यारी सवेर दे विच जो परमात्मा ने इन्ना प्यारा दिन जो सानू दिता है जी। अज दा दिन सारिआं नू बहुत बहुत जी मुबारक होवे। सो 19 मई 2026 ते बहुत ही प्रोमिसिंग टेंपरेचर्स अज दे इस खास दिन दे। इक तां जी हफ्ता असीं अज ऑफिशियली शुरू कर रहे हां, ते जो सोमवार वाला आलस हुंदा अज जरूर थोड़ा बहुता होणा, पर पूरी एनर्जी दे नाल जी दिन तुसीं अज दा शुरू करो। 20 डिग्री अज इस वेले दा तापमान है, ते बाकमाल जो मौसम अज दिन भर भी होने वाला है। 29 डिग्री तक अज तापमान पहुँचेगा, दिने धुप रहेगी, शाम वेले मीह वरण दे भी आसार ने। सो पूरा ही मौसम जो है इस दे विच अज सारा दिन जो है हेर फेर जो है चलती रहनी है। हालांकि येलो वार्निंग जो है यह भी जारी हो चुकी है अज दे दिन लई। सो सेक जो है वह सूरज पासों काफ़ी मिलन वाला, सो अपना ते बच्चियां दा ख्याल जी जरूर रखना। सो कल तो हो सकता है कि हुण फर्क थानू फिर लगे कि दो क दिन जो सी चलो राहत वाले सी, लगता सी हुण गर्मी आ गई, तो फिर दोबारा हुण हौली हौली ठंड वाले पासे असी जा रहे हैं। सो अगले 4-5 दिन जो इस हफ्ते दे ने, फिर टेंपरेचर जो है वह अध तो भी ज़्यादा घट जाना है। सो चलो अज का दिन जो है वह तो माणिए, तो अज का दिन जी थानू मुबारक होवे जो तुसी काम अज सोचे हुए ने, ते ओ परमात्मा उन्हां ते स्टैंप जो है अपनी हाँ दी जरूर ला दे जी। प्रोग्राम पंजाबी लहरां रेडियो, ते तुसी जो बने हुए हो साडे स्टूडियो नंबर तुसी नोट करो, 905-673-3337 905-673-3337 जी। ते नाल ही मैं रोज़ाना दी तरह याद यह भी बिल्कुल करवा देवां कि फोन राही तुसी प्रोग्राम नू सुन सकते हो, नंबर 416-477-2040 ते 416-470-2040 ते US दे विच नंबर 641-741-0860 है, 641-741-0860 जी US दा नंबर है। ते तुसी जी फोन राही भी इस सफ़र दे विच प्रोग्राम नू बिल्कुल सुन सकते हो, ते फोन राही मेरे कहन दा मतलब है ऐप राही तुसी सुन सकते हो। मोबाइल ऐप तुसी अपने फोन दे विच पाउणी है पंजाबी लहरां दी, तां जो कि भावें तुसी फिर कैनेडा दे विच हो, भावें US दे विच हो, या फिर किसी होर मुल्क दे विच हो, तुसी प्रोग्राम नू लाइव इस वेले ऐप राही भी सुन सकते हो। ते पंजाबी लहरां दी ऐप तुसी डाउनलोड जरूर करनी जी। सो मंगलवार दा यह सफ़र है, शुरुआत जो है प्यारी उस परमात्मा ने कर दिती है, क्योंकि दिन जो है वह चढ़ चुका है, अपने रंग जो है वह लैके जो ये दिन बहुत सारिया उम्मीदां दे नाल असी जो शुरू कर रहे हैं, ते परमात्मा दा सब तो पहला जी शुकराना ही बनता है जो एक नवी सवेर दिती है। नवी सवेर दे विच बहुत सारे बेशुमार मौके दिते ने जी। सो आओ सरवण करदे हां शब्द प्रोग्राम पंजाबी लहरां रेडियो दे नाल, तुसी बने हुए हो जी।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000
5: जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 पंजाबी लहरां या चलो AM 530 नूं 24 घंटे 7 दिन अपने फोन ते डायल करके सुनने दे लई डायल करो 416-477-2040 416-477-2040

सो काज खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत पलकन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपौ निरवैर मुस्कुराहट चेहरे का पाठ रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। ग्रे स्काइज़ दे नाल इस समय मिक्स जे जिहड़ा हैगा टैंपरेचर, यानी कि फुल स्लीव हाफ स्लीव दे विच कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, पर यू कुड वेयर जिहड़ा हैगा तुसी हाफ स्लीव पा के जिहड़ा निकल सकते हो। खूबसूरत वैदर है, प्लस टैंपरेचर डबल डिजिट दे नाल, और तकरीबन एक दो दिन तो बाद फिर यह डबल डिजिट बैक जाऊगा 15 to 16 डिग्री तक। मीह कणी बारिश के नाल टोरंटो दे विच तुसी सबर करते रहोगे। जैसे वर्ल्ड कप के मैच की गल आ रही है, प्रीमियर डकफोर्ड लोगों को राजनीतिक मुद्दों तो परे छड़ के अपने आप रेस्टोरेंट्स के बार के टेबल्स उत्ते भेज रहे हैं। उत्थे काफ़ी मुद्दे गरमाए नज़र आ रहे हैं। प्रोविंशियल सरकार जिहड़ी हैगी आ घिरी हुई है बहुता लंबा समा। कहिंदे हुंदे ने कि डायपर तो डैश चेंज करते रहो, नहीं तो स्मैल आने लग जाती है। ठीक है, डायपर एंड डैश जो तुम चेंज नहीं करते बड़ा लंबा ले जाने। यह तो जी 15 साल तो है जी, ये 14 साल तो है, फिर इदा का ही कम कर देंगे जिम्मेदार हो रहा है। दे डोंट गिव डैम, दे डू केयर अबाउट द वोट बैंक के सानू कौन लोग वोट पा रहे हैं, किन्नी अकल है उन्होंने, तो वो नेड़े तेड़े जे रहो, बाकी गए तेल लैन। इस तो बाद डोनल्ड ट्रंप के चाइना विजिट के उपर काफ़ी सारी गलबात जिते चल रही हैगी है। उत्थे जोड़े है कुजमा जोड़ा पहली तरीक के नेड़े तेड़े टेबल होकर डन होना चाहिए, जिसते मारकार नहीं पिछले 7 महीनों to 8 महीनों तो कम कर रहा है। वो जड़ा है किस करवट जाएगा समा ये भी इजाजत देगा। डोनल्ड गया, बहुत सारे होर गए, तो दुनिया में चल रही है फिलहाल। दूसरे पासे जो है लोकल खबर जी है उस दे विच कि जिथे मैं गल करूँगा लोकल, कल चंक्यूसी पार्क च की होया, भाई बहनो हम आ रहे हैं जहाज भर भर के और अपनी औकात लोगों को दिखाएंगे। भाई बहनो हम अपनी आदतें अपने टैची में रबड़ वाली चप्पलों के साथ ही लेके आएंगे। भाई बहनो रबड़ की चप्पल और अपनी आदतें पैक करके लाएंगे। वो तो भी गल करते हैं, मुद्दा काफ़ी गर्म रहा चिंकुजी पार्क का। सुन चाया नैशनल न्यूज़ के मैं सुनया कि वह बंद रहा बिकॉज कर दे गल, थोनू पता कल की होया थे उस मुद्दे के उपर 905-673-3337 जो फायर वर्क है वो उपर कहते इशू उठा बहुत व्डा। तो कल जब मैं आ रहा सी तां डिस्कशन चल रही सी राउंड टेबल के उपर तो नैशनल चैनल के उपर कि अनसुखावी घटना जी, मतलब अभद्र जी है घटनावां हुई जिदे कारण ये जड़ा फायर वर्क है उस दे उपर पील चर्चा दे विच रहा। स्पैशली ब्रैम्पटन की गल की गई है कि पार्क नू क्लोज कर दिता गया क्योंकि लड़ाइया झगड़े उत्थे अग वाले समान दे नाल होए। बट थोड़े च कोई जानता तो जरूर अपडेट कर दो कि होया की नहीं, तो तुसी इहदे बारे किन्नी क खुशी जाहिर कर रहे हो कि तुसी सुरखियां च रह रहे हो।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 B23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नू कांटेक्ट करो। थोड़े कोल AZ लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कांटेक्ट लई नंबर है 6472927557 6472925757।
3: मैं नवा कार लिया है, तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लई है, एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचदा वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए।
4: ओ जी एदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कम्मां लई इक्को जगह चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते, इना दे प्राइस अते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा। तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो, सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने। मिसेस अगर अप्लायंस जंक्शन कॉल 905-450-0054 905-450-0054।
5: ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਬੇਫਿਕਰ।
6: ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਲਾਨਸ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ RESP। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਨੂੰ 6477652340 6477652340।
7: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets si pal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichu puri family vacation upper

0: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
0: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905 874 98 78।

0: For hours, but can't work for 10 minutes and hates me.
1: IPL chal raha hai only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
3: करो कदों तो किस किराए दे छोटे जे घर च रवांगे
4: ओए बस मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु कॉल करन तक
5: तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज इक्विटी टेक आउट प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
6: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो तां मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नु जरूर मिलो नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बां तां मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना
5: या कॉल करो 647-294-5503
6: भरोसे अते विश्वास वाला ना

0: किन्ने बारी क्या तेन ऐदा ना वेख्या था सीधे दिल से वजदी है जो मर गया ना तेरे पल्ले पाऊं
1: एक काम क्यों नहीं करता अड़िया थाने जाके रिपोर्ट लिखा दे
2: बेचारा रिपोर्ट लिखान गया से लगता किसी ने सुनी नहीं
3: पुलिस कहे ऐसी झूठी यार।

0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंटर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वाह, जरूर सिंपली इंडिया पहुंचो। सो सी ना गल अज कुदरती चल पी कर रहे सी हुण इंग्लिश दे विच कहिंदे आ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ते मैं पुछ रहे सी यार कि पंजाबी च इहनू कहना वी की कहांगे वी जिहड़ी चीज़ तुहाडे कोल नहीं हैगी उही तुहानू चंगी लगदी आ। एक वीर कहिंदा कि लड्डू दूजे दे हत्थां च चंगा लगदा ते आप खाइए तंग करदा। एक वीर हुणे कहिंदे कि दूजे दे हत्थ दे विच कही चलदी सौखी लगदी आ या दूजे दे मोढे ते बंदूक चलदी सौखी लगदी है। एक वीर कहिंदे दूर दे ढोल सुहावणे लगदे ने। एक बाई जी कहिंदे कि अपने बच्चे ते दूजे दी बीवी हरेक नूं चंगी लगदी है। चलो ये तां चलो फिर भी हासा मखौली है, बट होर कोई चीज़ां तुहाडे मन च जे आउंदियां ने वी द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड तां की कहना होवे। नंबर है अपना 905-673-3337 9056733337905673337 अपना फोन नंबर है। याद रखो फैशन आईक्यू नू क्योंकि फैशन आईक्यू ने बड़िया डीलां लातियां। तुसी हुण कस्टम कुर्ते पजामे, कस्टम शेरवानिया वहवां लई, कस्टम कोई कोट पेंट लेने, एक किलो दूजा 25% ऑफ। थोड़े व्याह आ रहे हैं घर च ते 15-20 मैचिंग कुर्ते पजामे तैयार करवाने हैं। फैशन आई क्यू 905-453-2225 फैशन आई क्यू एयरपोर्ट डेरी क्वीन कैनेडी मकवीन मेफील्ड लेडी सूट अप टू 50% ऑफ ने। 5 बेडशीट लो $50 च, हैवी कंबल ते रजाई एक किलो दूजा 25% ऑफ। 905-453-2225 फैशन आई क्यू। हाँ जी 3022 वेलकम।
2: थैंक यू नवी। मैं क्या जिदा वो कह के नहीं गए सके पहला लास्ट कॉल के दूजे दी बीवी ते आपदे बच्चे ज्यादा वधिया लगदे आ, हैना? ओदा ही जिवें आ सोंग च कहिंदे नहीं गे के लड्डू दूजे दे हत्थां चंगा लगदा आप खाइए तंग करदा। ओवें पंजाबी च कहावत आ कहिंदे आ वी जो दूजे दी थाली च ना हमेशा लड्डू वड्डा ही लगदा
1: आ। हां ए वी कहिंदे आ बिलकुल।
2: हाँ कि ओदे ओदे कोले इन्ना कुछ आ, ओदे कोले ए ए मेरे कोले नहीं हैगा ए, तां ओ अगले हो सकदा थोड़े कोले ओदे दाणा दुगणा होवे, है ना? पर आपां नूं लगदा आ कि ओ पंजाबी च जिवें कह दिंदे आ कि दूजे दे थाली दे विच
1: थाली च लड्डू वड्डा
2: लगदा, आपदी थाली च छोटा लगदा आ।
1: हां नहीं आपां नाल कंपेयर बहुत करदे आ, पंगा ही इह है। मतलब अद्धिआं नूं बीमारी